0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल, इश बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji, Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian radio station.
1: Radio Haji.
2: Stay tuned.
3: अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
5: हाँ जी रेडियो हाँ जी 1674 AM दे सारयां दा स्वागत जी। अज 12 जून ते शुक्रवार दा दिन है ते आपां हुण रेडियो हाँ जी दे सिडनी स्टेशन तो लाइव शोज एक बार फिर तो लैके हो गए हाजर। लंबे ब्रेक तो बाद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ते प्रोग्राम अगले हफ्ते तो बकायदा शुरू करांगे जिहड़े दिन दे जिहड़े प्रोग्राम हुंदे सी ते कुछ नवें भी। पर अज शुक्रवार के दिन थोनू दस दी कि अज प्रधान इलाका कड़ा नहीं होना क्योंकि हरसीन जी अज हाजिर नहीं है। सो मैं थोड़े नाल अज फिल्मों दी ही गल्लां करनियां ने। प्रोग्राम पर्दा बेपर्दा थोड़ा लंबा चलेगा वो तो बाद एक इंटरव्यू भी हैगी है इम्तियाज अली होना दी वो भी थानू सुनावांगे। पर प्रोग्राम के अखीर दे विच पर फिलहाल कुछ नवें गाने लैके आवांगे। पर्दा बेपर्दा इस ब्रेक तो बाद शुरू कर दें। जी खान का गाना सुन लो।

0: जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
1: भोले ने कसूते बसाते
0: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए भोले ओए टू
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलेंगे
4: आहो जी आहो।

स्वागत है दोस्तों आज दी कहानी आज दे विचार दे विच। आज दी जेड़ी कहानी या विचार है ये ओशो दे एक लेक्चर्स दे विच सीगा जेड़ा तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं। आज दी गलबात उस सच ते आ जेड़ा असी वेखण तो डरदे आ वो सच जेड़ा साडा आ अपने आप का वह चेहरा जड़ा असी अपने आप तो लुकाया हुंदा। एक गल एक कहानी नाल जुड़ती है। एक शहर दे विच एक दुकान खुलती दुकान दे उपर लिखा सीगा कि इत्थे तुसी अपनी मनपसंद बीवी लभ सकते हो जिद्दां दी पत्नी तुहानू चाहीदी है। तो उत्थे एक नौजवान मुंडा जांदा जदों दुकान दे अंदर जांदा तो उत्थे दो दरवाजे होंदे ने। जदों बिंदा ते बड़ी दुचित्ती दे विच आउंदा कि मैं तां एक चीज़ ले आया सी इत्थे दो दरवाजे ने। एक दरवाजे ते लिखिया हुंदा सी जवान दूजे दरवाजे ते लिखिया सीगा वड्डी उमर वाली। सो जिस ते लिखा हुंदा ही जवान घर वाली उह दरवाजा खोलदा। जदों दरवाजा खोलदा तां बड़ा हैरान हुंदा अंदर तां कुछ भी नहीं पर हाँ होर दो दरवाजे जरूर हुंदे ने। एक दरवाजे ते लिखा हुंदा बड़ी सोहणी एक ते लिखा हुंदा बड़ी साधारण आम जी। फिर वो जिते लिखा हुंदा बड़ी सोहनी वह दरवाजा खोलदा बड़े चा चा नाल। अगे फिर दो दरवाजे होंदे ने। एक ते लिखा हुंदा चंगा खाना बनाउण वाली एक ते लिखा हुंदा जिन्हों खाना नहीं बनाउणा आउंदा। सोहनी भी उही कीता जो तुसी ते मैं करते उन्हें पहला दरवाजा खोलिया चंगा खाना बनाउण वाली पत्नी। हैरानी की हद तो उदों हुंदी है जदों अगे दो दरवाजे होर हुंदे ने। एक ते लिखा हुंदा दहेज लियाउण वाली एक ते लिखा सी ना दहेज लियाउण वाली। चलो वह दरवाजा खोलदा जिस ते लिखा हुंदा दहेज लियाउण वाली पर इस वारी अगे दो दरवाजे नहीं सी। इस वारी अगे सी एक शीशा जिस ते लिखा सी कि तुसी बड़े गुणा दे इच्छुक हो उस तो पहला अपना मूँह देखो इच्छावां जिहड़ियां नित नवें दरवाजे खिलाउंदियां ने। एक इच्छा चों दूजी इच्छा निकलदी है ते नवें दरवाजे खोलण लई मजबूर करदियां। इच्छावां दे चक्कर च नवें दरवाजे खोलण दे चक्कर च असी अपना चेहरा वेखना ही भुल जांदे हां। एक इच्छा चो दूजी कोई इच्छा निकली एक दरवाजा खोलिया उतों कोई होर दरवाजा खोलिया तो दरवाजे खोलते ही गए। फिर सपना वेख्या हरेक दरवाजा खोलण तो पहला हरेक इच्छा तो पहला पर अखीर नू खाली रहे। अपने आप नू पहचानिया जावे जो अपने आप नू पहचानदा वह संसार तो कुछ नहीं मंगदा क्योंकि संसार कोल कुछ हैगा ही नहीं मंगण लई। ते जो अपने आप नू पहचान लैंदा उहनू वह सब मिल जांदा जो उहने मंगिया सी जो उहने नहीं मंगिया। ते जिहड़ा मंगदा ही रहिंदा दरवाजे खोलदा रहिंदा इच्छा ते इच्छा रखदा ही रहिंदा उहनू शायद ही थोड़ा थोड़ा करके कदी कदी मिल जाता हो बहुती बार तो मिलता भी नहीं। ये गल शीशिया दरवाजिया ते इच्छावां तक सीमित नहीं सीमित होनी साढ़े सबर ते साढ़े संतोख ते नहीं तो वादी उम्र के नाल ओपरचुनिटियां का घाटा थोड़ी है।
ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸਰਜੂ। ਆਓ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚੋਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
5: हाँ जी रेडियो
6: बेबी मेरी, हाय हाय कोली मारे अखियों से, हाय हाय कोली।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यू आर लिसनिंग
4: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो
3: हांजी, स्टे ट्यून्ड।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.
3: Eid Yunge King Khan Yo Yo Honey Singer.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा The Smart Choice.

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio
2: Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Hanji,
0: stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
4: की कह रहे हो?
3: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: की कह रहे हो?
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिन्नो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
6: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
7: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
10: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: Yeah, Monty and Cotton DJ on the floor. Come on, buddy. आज मैंने लग रहा था अपना शो काटा था डीजे से आता
1: मेरे गाने बड़े बढ़िया ला
0: रहे यार बोले क्या है यार तर याद
1: नजारे लो नजारे
0: नजारे
1: लो तुसी
0: चेको चेको

0: यो हाँ जी 1674 है।
1: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: ओ मुछ ते मरूद है ते अखां च बरूद है, टॉप दी ओ गन है ते टॉप दी ओ रन है, रीवन कटाउंदी जिहड़ी वैरियां दी कुटदा।

0: कृष्णा जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
6: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
4: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं हूँ आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे चुन रहे हैं रेडियो।

0: यो हाँ जी 1674
1: आजा प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील कर
3: टाइट वेरी टाइट।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: तन होवत आत्म परगा सही कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै
0: कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सहि समावै
1: अपने जन को सास सास मारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दस श्लोक
1: कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार नै जल थल महियल सोए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: करन करावन कर जोग जो तिस पावै सोई होग
1: किन मैं थापो थाप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा
0: हुक्मै तार अतर रहावै हुक्मै उपजै हुक्म समावै
1: हुक्मै ऊंच नीच व्यवहार हुक्मै अनक रंग प्रकार
0: कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा समाई
1: प्रपावै मन गत पावै प्रपावै ता पाथर त्रावै
0: प्रपावै बिन शास्ते राखै प्रपावै ता हर गुण पाखै
1: प्रपावै ता पथ तुधारै आप करै आपन बिचारै
0: दोहसरिया का स्वामी खिलै विकसै अंतर जामी
1: जो पावै कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै
0: हो मानक ते क्या होयावै जो तिस पावै सोई करावै
1: इसका हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे
0: अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै
1: परमे भूला देह दिसतावै निमुख माहे चार कुंट फिरावै
0: कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले
1: खिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज
0: जाका दिष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दस पलटावै
1: जाको अपनी करै बख्शीश ताका लेखा ना गने जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बंत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई
0: इसका बल नाई इस हाथ करम करम सर्व कुनाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो
0: कबहू ऊंच नीच में बसै कबू सोक हर खरंग हसै
1: कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू उब काश पयाल
0: कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार
1: कबहू नृत करै बो पांत कबहू सोई रह दिन रात
0: कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो त्रवाल
1: कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पे खारी नीच का साजा
0: कबहू अब कीर्त में आवै कबहू भला भला कहावै
1: ज्यों प्रभु राखै ते भी रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै
0: कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मौन धारी लावै ध्यान
1: कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबहू कीट हस पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभु पावै ते वै नचावै
0: ज्यो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए
1: कबहू साध संगत ए हो पावै उस स्थान ते बहर न आवै
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश
1: मंतन नामर ते करंग सदा विसै पार ब्रह्म कै संग
0: ज्यो जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ ग्यारह श्लोक
1: सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान सुनर पाती हो स्वान
1: जो जान मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावै जन्म मरे बो जोन भरमावै
1: धन भूम गा जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै
1: धनवंता होए कर गुर बावै तरन समान कछ संग न जावै
0: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आसु पल पीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जानै बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत
0: किसे ना बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जाका मिटै बिमान सूजन नानक दर गै परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: अनक यत्न करा तुम निद्रवै हर दर गै को कैसे गवै
1: आप सुको जो भला कहावै तिसह भलाई निकट न आवै
0: सर्व किरिंजा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जानै मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए
0: जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन मैं
1: फिरदा को बैरी मी तब लग निचल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन सुमाए तब लग धर्म रह देश जाए
1: प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै
0: सैस कटेला कोट तावै तृप्त न आवै माया पाछे पावै
1: अनक भोग बिख्या के करै नह तृप्तावै खप खप मरै
0: बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोत बितै सब काजै
1: नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए
0: करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाव
1: करन करावन करनै हार इसकै हाथ कहां विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए
1: जो किछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हो कै संग
0: पूजै देखै करै विवेक आपै एक आपै अनेक
1: मरै न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहया समाए
0: आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ हो करनै हार
0: उसते बिन कहो किछ होए थान तनंतर एक कै सोए
1: अपने चले तब करनै हार कौत करै रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किनै बख्यानी
0: सच सच सच सब की

0: ना कोट मदे किने विरले चीना
1: पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर पार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी स्वर्ण बखानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत
0: मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ बारह श्लोक
1: संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: संत के दुखन हार जा कटै संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सुबाते ही
1: संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक बीतर
1: संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन कागजों लवे
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को छले
0: संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए भीगत पाहे
0: संत का निंदक महा अतताई संत का निंद खिंटिक न पाई
1: संत का निंदक महा त्यारा संत का निंद परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी यार दीन
1: संत के निंदको सर्व रोग संत के निंदको सदा बिजोग
0: संत की निंदा दुख में दुख नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी के सह का निमित
0: संत का दुखी को डान लागे संत को दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी
0: संत का दुखी जन में मरे संत के दुख ना सुख ते टर
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता ले मिलाए
0: संत का दुखी अज बीते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे
1: संत के दुखी को ध्यान परमाईया संत का दुखी उजड़ पाईया
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास में ना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे आपन बीजा पे ही खाहे
0: संत के दुखी को अवर ना रखन हार नानक संत भावे ता ले उबार
1: संत का दुखी ओ बिल लाए जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक इधर नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटाए की ला जो बुआर तिल खेत माहे बहेला
0: संत का दुखी तरम ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत
1: किरत निंद का तुर ही पया नानक जो तिस पावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगरूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी मां ना मरे ना जीवाई है
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख ना तृष्णा कोई जैसा पावे तैसा कोई होए
0: पया कितन मेटे कोई नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसके ओहो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार
0: की उस्तत करो दिन रात तिसे त्या वो सास गिरा
1: सब कछ वर्त है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेल अब करने हार दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ पागी नानक जन से
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम पग जना कै मन विश्राम अठ तेरह श्लोक
1: तजो स्यानप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: मन की टेक विधि सब जान देवन को एक है भगवान
1: जिस कह दिया रह अगाए बहुर न तृष्णा लागे आए
0: मारे राखे एक आप मान कै कुछ नाही हाथ
1: तिसका हुक्म बूढ़ सो खोए तिसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर पर सोए नानक बिघ न लागे कोई
1: उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
1: नैनो पिव ठाकुर कारंग साध संग बिन सह सब संग
0: चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म सरवन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा
0: वडबागी ते जन जग माहे सदा सदा हर की गुण गाहे
1: राम नाम जो कर है बीचार से धनवंत गनी संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछान है इतुत की हो सो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन माने नानक तिन निरंजन जाने
1: गुर प्रसाद अपन आप सूझे तिसकी जानो तृष्णा बुझे
0: सा संग हर हर जस कह तू सर्व रोग त्यो हर जन नहत
1: अंदर कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त में सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागह दुख
0: जिसको हर पर मंचित आवे सो संत सुहेला ने डुलावे
1: जिस पर अपना कृपा कर सो सेव कहो किसते डरे
0: जैसा सत तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सीजा गुर प्रसाद तत सा बूझिया
0: जब देखो ता सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
1: नह किछ जन्म नह किछ मरे अपन चलित आप ही कर
0: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट आज्ञाकारी तारी सब शिष्ट
1: आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राज थापो थाप
0: अविनाशी नाही किछ खंड धारण धार रिहु ब्रह्मांड
1: अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तन्मंत
1: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण
0: आपे मेल लय कृपाल गुर का सजो पै निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़ भागे
0: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किछ करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसै हर संग
0: सह सुभा होवे सो होए करने हार पछाणे सोए
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
0: ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਹੇ ਸੁਮਾਏ ਓਏ ਨਿਧਾਨ ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਾਏ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚੌਦਾਂ ਸਲੋਕ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਟੁਟੀ ਗੰਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ
0: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਮਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾ ਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਸੌ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ
0: ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
0: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੀ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀ ਆਦਰ ਵੈ
1: ਅਤਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਾਂ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ
0: ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾ ਮੈਂ ਥਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥਮਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹਤਾ ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਾ ਰਹਿ
0: ਜਿਉ ਅੰਤ ਕਾ ਦੀਪ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
0: ਇਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਤੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
0: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਸੈ ਚਿਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ
0: ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਿਹੋ ਰਸ ਡੋਬੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾ ਫਿਰ ਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ
1: ਤਜਬ ਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿਤੂਲ
0: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗੈ ਸੋਏ
0: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਤੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
0: ਅਨਕ ਵਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ
1: ਕੋਟ ਗਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ
0: ਮਿਰਤੋ ਕੋ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ
0: ਸਭ ਕ ਤਿਸ ਕਾ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
0: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
0: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਏ ਤਿਹ ਲੋਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ
0: ਸਾਚੀ ਦਿਸ ਸੱਚ ਆਇਆ ਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਪੰਦਰਾਂ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਨ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
0: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
0: ਸਾਧ ਤਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨੁਰਾਓ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ
0: ਹਰਨ ਪਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਭ ਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾ ਕੈ
0: ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਬ ਮੈਂ ਤਬੀ ਸਰਗਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ
0: ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
0: ਸੁਨਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਤਿਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਰਹਿ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
0: ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੇ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਕਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਬਿਕੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪੂਰ ਰਹੇ ਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
0: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬੰਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਓ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੈ ਸਗਲੈ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਾ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਨ
0: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
0: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
0: ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬਜਾਏ ਤਿਸੇ ਸੋ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆਸਵ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰ ਨੈ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
0: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮੀਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਕੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ काटन हार जाके संग तरै संसार
0: जन का सेवक सुवड भागी जन के संग एकले गुलागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे
0: सुखमनि सुख अमृत पब नाम पग जना कै मन विश्राम 816 श्लोक
1: आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत आवनहार
0: आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्राप वक्ता सुरत सत सत जा सुनता
0: भोजनहार को ससब होए नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मान्या करन करावन तिन मूल पछानिया
0: जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत ज्ञान तिस्मन प्रगटाया
1: पैते निर्भव होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना
0: बस्त मैं ले बस्त गडाई ताको भिन न कह ना जाई
1: बूझै बूझनहार विवेक नारायण मिले नानके
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभ तारै नानक सो सेवक सास सास सुमारै
1: अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै
0: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आपत राखै ताकि गत मित कोई न लाखै
0: प्रभ कै सेवक को न पहुंचै प्रभ कै सेवक ऊचते ऊचै
1: जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
0: नीकी कीरी मैं कर राखै पसम करे लश्कर कोट लाखै
1: जिसका सास न काटते आप ताको राखत दे कर हाथ
0: मानस जतन करत बो पात तिसके कर्तव्य बिरथे जात
1: मारे न राखै अबर न कोए सर्व जियां का राखा सोए
0: काहे सोच करे रे पानी जप नानक प्रभ अलख बडाणी
1: बारम बार बार प्रभ जपिया पी अमृत एहो मन तंत्र पिया
0: नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसके अबर नाहीं दिसताया
1: नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कसंग
0: नाम रस जो जन तपताने मन तन नाम है नाम समान
1: उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम
0: लो जाचे वादन रात प्रभ अपने जन की नींदात
1: करह भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यों रह है समाए
0: जो होवा हो वसु जाने प्रभ ने का हुकुम पछाने
1: तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो
0: आठ पैर पर बसे हजूर है कहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता
1: तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसकै दरसा पाप मिटावे
0: अवर सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग
1: आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम 817 श्लोक
1: सत पुरख जन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हेरै गुर बचनी हर नाम उचरै
0: सतगुर सिखै बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै
1: सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी हे
0: सतगुर सिखा हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै
1: गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सहै
0: आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै
1: मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक के कार्ज रास
0: सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले
0: विश्व विश्व गुर का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गत जान
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ
0: सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग दाता
1: ब्रह्म है जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम
0: सहर सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुरु भागी पाइए
1: सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत
0: संग्राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगह गवै
1: सुनकर बचन करन आगाने मन संतोखा तुम पतिया ने
0: पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र अमृत दिष्ट पेख है संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए
0: जे बाए कुस्तत अनेक सतपुर पूरन बबे
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंधन नित कर है चरण कमल हृदय स्मर है
0: सद बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
1: एहो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए
0: प्रका नाही कदे विनाश जाके मन पटे गुणतास
1: आठ पहर हर का नाम ले सच उपदे सेवक कौ दे
0: मोह माया कै संग न लेप मन मै राखै हर हर एक
1: अंधकार दीपक परगासे नानक पर मोह दुख तहते नासे
0: तब्त माहे ठांड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे
0: पौ चुका निर्भय होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे
1: जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी
0: हित पाई चूके भंगवन सुन नानक हर हाजा सर्वन
1: निर्गुण आप सरगुण पी ओही ਹੋਈ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ
0: ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ
1: ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
0: ਪੋਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪੈ ਪ੍ਰਗਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਅਠਾਰਾਂ ਸਲੋਕ
1: ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵ ਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਸੰਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰਨਾਮ ਆਧਾਰ
1: ਅਵਰੋ ਪਾਸਾ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦਮੈ ਉਰਧਾਰ ਹੋ
0: ਕਰਮ ਕਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਥ
1: ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ
0: ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾ ਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵ ਹੈ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ
1: ਜੇ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ
0: ਅਨਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਖ ਦਲਾਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦਰਦ ਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ
1: ਕਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ
0: ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ
1: ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਸਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮਫਾਸੀ
1: ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ
0: ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ
1: ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ
0: ਅਨਕੋ ਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ
1: ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੂ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ
0: ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ
1: ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟਾਂਬਰ ਬਨ ਤੈਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ
0: ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ
1: ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ
0: ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੋਂ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ
0: ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ
0: ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਓ
1: ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ
0: ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤ੍ਰਿ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨਸ ਚਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖ ਫੈਲ
1: ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗਰਾ ਸਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ
0: ਛਾੜ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਸ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸਜਤਨਾ
1: ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰ ਗੈ ਜੈਕਾਰ
0: ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤ ਕਲੇਖ
1: ਏਕੋ ਜਾਪੇ ਕੋ ਸਾਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ
0: ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰਹਿਉ ਪ੍ਰਭ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭੈ ਏਕ ਅਰਾਧ ਪਰਾਛਤ ਗਏ
1: ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤਾ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਉੱਨੀ ਸਲੋਕ
1: ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਤੇ ਆਓ
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤਨੀਤ
0: ਏਕੋਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ
0: ਜਿਨ ਚਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾ ਨੇ
1: ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
0: ਪਰੈ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅੰਧ ਨਿਰਲਾਗ
1: ਵਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮਰ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ
1: ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਉਹ ਦਇਆਲ ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ
0: ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਪਰਮ ਗਇਆ
1: ਪਿਛਪੁਨੀ ਸਰਦਾਸਾ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ
0: ਇਸਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ
1: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੈ
0: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ
1: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ
0: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ
1: ਗੁਰਪੂਰ ਐਤਾ ਤਿਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ
0: ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਹੁਕਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
0: ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ
1: ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਧ ਨਾਮ ਬੂਟ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋ ਤਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ
1: ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ਼ਚਾਓ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਓ
0: ਨੇਤਰੋ ਪੇਕ ਤਰਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਕਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਤੋ
1: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮੰਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ
0: ਏਕ ਬਸਤੀ ਜੇ ਕਰਮਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ
1: ਬਾਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ
0: ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਗਤ ਵਿਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ
1: ਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
0: ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ
1: ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀ
0: ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ पुरख भगवान
1: सर बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर की गुण गाए
0: अनक राज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन भाई
1: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
0: पलि सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत
1: साध संग प्राप्त हो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
0: मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जब अकार इकुचना दृष्टि ताप अपुन तब कहते होता
1: जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वरण चिहिना जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
1: जब अपन आप अपार ब्रह्म तब हो कहा किस होवत परम
0: अपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्राप्त केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
0: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्राप्त सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए
0: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
1: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
0: अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण कर्ता प्राप्त सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तम कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
1: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
1: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस
0: जह जो स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भू कौन तृप्तावे
1: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार
0: जा अपनी सुवा अपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई
1: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेद कतेव कहां कोचीन
0: जब अपने आप उतारे तो सगन अपसगन कहां बिचारे
1: जह अपन ऊंच अपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप
1: जह अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया
0: आपस को आपे आदेश तिहु गुण का नाही प्रवेश
1: जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जह अपन आपा पतियारा तह कौन कथे कौन सुन न हारा
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
0: जह आप रचियो पर पंच आकार तिहु गुण में कीनो विस्तार
1: आप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत
0: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार
1: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बख्या
0: अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है
1: जह अवगत भक्त है आप जह पसरे पासार संत प्रताप
0: रूपा का आप है धनी उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आप है कौत करे आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग
0: जिस भाव है तुसी अपन ना लावे जिस भाव है तुस खेल खिलावे
1: बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक्की श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
1: जा तिस भावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लय समाए
0: तुम ते पिने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
1: जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
1: जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
0: जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे
1: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सिरे एक निरंजन राए
0: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ
1: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
0: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
0: तत्पाले जी अनुभव पात जो जो रचियो सुत सह त्यार
1: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया
1: जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
0: सेवक को सेवा बने आई हुक्म बूझ परम पद पाए
1: इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार
0: बंधन तोर पै निर्वैर अंधन पूजे गुर के पैर
1: यह लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप मेले
0: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
1: राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
0: अमृत बचन हर की गुण गाओ प्रांत नुन का हे सुहाओ
1: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटे अज्ञान बिन सहंदीरा
0: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
1: हलत पलत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उतार
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमन बसै ते साच परीखिया
1: मनता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए
0: सच वपार करो वापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
1: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर ना आवै जाहे
0: तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे राखन हार त्याए
1: निरभउ जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
0: जिस प्रभु राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कै कारज पूरा
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
0: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन बसे सोत निहाल ताकै निकट न आवत काल
1: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया
0: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भल जना कै मन विश्राम अठ बाई श्लोक
1: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
1: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
0: नौनद अमृत पव का नाम देही में इसका विश्राम
1: सुन समाध अनहत नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
0: इन देखिया जिस आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
0: करण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: वंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे
1: तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
1: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडूल न कबहू डूलै
0: सर्व करा कर खेलै खेल मोल न पाइय गुणे अमोल
1: सर्व ज्योत मह जाकी जो धार हे ओ स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
1: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: तिस पावै ता करे विस्थार तिस पावै ता एकंकार
0: अनक कला लखी न जाए जिस पावै तिस लय मिलाए
1: कवन लिप्त कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर
0: अंतर गज से आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए
1: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
0: सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना
1: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
0: सबके मदल पत्तो रह जो कुछ कहना सो आप ही कह
1: आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता ले समाए
0: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो हो किने कुछ करा
1: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
0: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राज
1: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
0: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभु सोए
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
1: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
0: जा नामन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
0: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
1: पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
1: सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस नित्य आगो तरंग संत जना की दूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो साध संग आगन सागर तरहो
0: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन अमोलीक लाल यह रतन
1: संत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक कह निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर पै सबरेन अमृत नाम साथ संग लैन
1: सो प्रसन्न भए गुरदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव
0: आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुरस न कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभि खेप हमारी
0: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान
0: हर दिन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
1: फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
0: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमर ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਮਤਾਤ ਕੇਵਲ ਹਰਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ
1: ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਛੁਟੈ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਚੀਤ
0: ਮਰਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
1: ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅਮਰਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ
0: ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ
1: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ

कर्मखंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोत महाबल सू, तिन में राम रहया प्रभु।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Om Shanti, and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Happiness Index को जब देखते हैं आप समझ में आ रहा है कि वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा था. ये भी समझ लिया हमने कि टेक्निक क्या है, कैसे उसे स्टेबल रख पाएंगे. बिलीफ सिस्टम्स को बदलने की बात थी, वो भी बहुत कुछ समझा. आगे और बढ़ाते हैं अपनी बात को. और जब हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल, हर एक घंटे बाद कुछ देर अपने अंदर जो बच्चा है जो इधर उधर कहीं भाग जाता है उसे पूछें, वो ठीक है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई, या उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बरकरार है. तो आज बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: आपका हैप्पीनेस इंडेक्स तो हर बार ही स्टेबल होता है, बट बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं. आपसे शुरू करते हैं, कभी आपके साथ भी ऊपर नीचे होता है?
1: ऑफ कोर्स, एवरी डे आई थिंक कुछ ना कुछ बातें तो आती हैं जैसे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ इजियर है. पहले मुश्किल था, एंड दैट्स द जर्नी, कि वो डे बाय डे इजियर होता जाएगा. अवेयरनेस ऐसी चीज नहीं आज सोचा आज हो गया, बिकॉज वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर ये डीप चीजें हैं और हमारे बहुत डीप रूटेड संस्कार हैं जिनको हम ऊपर ऊपर से नहीं ठीक कर सकते. कई बार ऐसा लगता ठीक हो गया, यू नो यू से ओके ये प्रॉब्लम थी मेरी सोचने के तरीके में, मैंने एक दूसरी थॉट क्रिएट की, ठीक हो गया. लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज इट हैज क्रीप्ड अप अगेन, ये कहां से ये वैसे वाली थॉट्स फिर से आ रही है. इट्स जस्ट दैट नाउ फोकस इज वेरी क्लियर. उसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होता कि दूसरा ठीक होगा तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा. आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट. मुझे ये पता है कि ये मैं खुद क्रिएट कर रही हूं और जितना जल्दी डिसाइड करूंगी तो उतना जल्दी उसको ठीक कर लूंगी. सो आई ऑलवेज जस्ट हैव टू स्टॉप एंड टेल माई सेल्फ कब तक का प्रोग्राम है इस हालत में रहने का. थिंक अबाउट इट, कितनी देर तुम्हें इस तरह से कंफ्यूजन में, दर्द में, हर्ट में रहना. And then, you know, that question itself says, okay, okay, fine, I know I was going on the wrong track. And you stop and you say, dhyan rakhna shuru kar do. Jaise humne pehle bhi dekha, ke let go karna hai. Jo pakda hua hai, unko jaldi jaldi chhodte jao. Jitna der pakad ke rakhte hai, utna phir chhodna mushkil hota hai. Isi tarah ek aur cheez ka jo hum dhyan rakh sakte hai, and that is let be. Let people be the way they are. Agar aap एक दिन चेक करो या एक घंटा भी चेक करो, हमारा माइंड बहुत ज्यादा औरों के जीवन में इंटरफेयर करता है. मतलब कोई इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन को एक आदत पड़ी हुई है औरों के जीवन के बारे में सोचने की. तो लेट एवरीवन, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेट देम बी. एंड यू नो स्टॉप इंटरफियरिंग इन पीपल्स लाइव्स. उन्होंने मांगा नहीं है हमसे हमारा ओपिनियन, और ये ओपिनियन जरूरी नहीं हम शब्दों में दे रहे होते हैं, हम अंदर ही चल रहे होते हैं. राइट फ्रॉम अ पर्सन, यू नो यू सी अ पर्सन एंटरिंग, हम उनकी लुक्स पर क्रिटिकल हो रहे हैं, हम उनकी ड्रेसिंग सेंस पर क्रिटिकल हो रहे हैं,
0: उनके बिहेवियर पर, यू नो लाइक कैसे वो बात कर रहे हैं, हर चीज पे हम जो है वो
1: कॉन्स्टेंटली. तो क्या होता, एक एक मोमेंट, जैसे हमने देखा इट्स वन मोमेंट, माई लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मिनट्स, एक एक मिनट ऐसे पास हो रहा है. अब जितने मोमेंट्स हम औरों के बारे में सोच रहे हैं, उतनी देर हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, और हम फिर उनके बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड वेन एवर वी थिंक और डू समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, वो मेरी एनर्जी को वेस्ट करता है. लेट्स से कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा ब्रिक है, अभी मेरे में उतनी ताकत नहीं है उसको तोड़ने की, लेकिन मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूं तो वो टूटेगा नहीं. आधा घंटा, एक घंटा ट्राई किया, लेकिन आफ्टर दैट हाउ विल आई फील, मेरे को बहुत थका हुआ फील होगा. क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी बहुत लगाई वो काम करने में जो कि मेरे से हो नहीं सकता. तो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एक एक थॉट हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी. तो इसके लिए हम हमेशा यही याद रखते कि सारा दिन ड्रामा चल रहा है, हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है. लेट्स नॉट राइट अदर पीपल्स स्क्रिप्ट. ये जो हम स्क्रिप्ट सारा दिन औरों की लिख रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इनको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, ये भी कोई बात करने का तरीका है, थोड़ा सा तो पोलाइटली बोलते, ये नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है इनके अंदर. वी आर राइटिंग देयर स्क्रिप्ट, दे आर फाइन द वे दे आर. लेकिन हम उनकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम ये सोचना भूल जाते, मुझे क्या बोलना चाहिए था. अब ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप हर एक सीन में देखेंगे, इवन अ सिंपल थिंग लाइक सपोज बोथ ऑफ अस हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन बढ़ते बढ़ते एक आर्ग्यूमेंट बनती जा रही है, लेकिन डिस्कस करते करते मेरा ज्यादा ध्यान किस पर होता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए था, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए था, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रामा। आज अगर हम थिएटर देखने जाए तो ड्रामा स्मूथली परफॉर्म तब होगा अगर हर एक एक्टर
0: अपने पे काम कर
1: रहा है, अपने पर काम कर रहा है। एक बार हम एक थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे थे इन विच इट वॉज अ मोनो एक्टिंग, यू नो, एक ही था एक्टर एंड दैट वन एक्टर वॉज प्लेइंग लॉट ऑफ रोल्स। इट वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस। उनके बहुत डायलॉग्स थे उनको जो बोलना था एंड उन्होंने वो प्ले मतलब अनगिनत बार वो कर चुके थे। इट वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर परफॉर्मेंस, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल। अब इस चीज में अगर आप देखें तो उस एक्टर को वो डायलॉग्स तो बाय हार्ट याद होंगे, मतलब बिना एफर्ट के भी वो बोल सकते हैं। और उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो परफॉर्म कर रहे थे तो इन द मिडल ऑफ द प्ले किसी का मोबाइल बज गया, यू नो, एंड दैट एक्टर वेंट ब्लैंक। ही जस्ट स्टूड, ही जस्ट डिडंट नो कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है। और उनको ऐसा दो मिनट लगा, उन्होंने फिर जैसे यू नो ही जस्ट स्टूड स्टिल साइलेंट। टू मिनट्स के बाद ही सेड सॉरी एंड देन ही सेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट एंड देन ही स्टार्टेड हिज परफॉर्मेंस। तो वो देखते हुए जस्ट द थॉट व्हिच केम टू मी इज कि एक्टर अपने रोल पर और अपने डायलॉग्स पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड है फुल्ली कि एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी और वो अपने रोल और अपना डायलॉग भूल गया। हम सारा दिन अपने जीवन कैसे जी रहे हैं? हम तो अपने माइंड को हर तरफ डिस्ट्रैक्टेड होने दे रहे हैं, हमें अपना रोल और अपना डायलॉग
0: पता ही नहीं है ना,
1: से ध्यान में रहने वाला
0: है, अवेयर ही नहीं है बिल्कुल भी, यू नो,
1: कैसे ध्यान में रहेगा। एंड देन हाउ विल वी गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस टू एवरी रोल दैट वी आर प्लेइंग, बिकॉज हम तो अपने रोल में है ही नहीं। See, if I'm here, लेकिन मैं अपने बजाय औरों के रोल्स औरों के डायलॉग्स के बारे में सोच रही हूँ, आई एम नॉट देयर इन माई रोल, हाउ विल माई लाइफ बी। एंड फिर सब कुछ करते हुए भी हम कह रहे हैं वो अनुभव नहीं हो रहा, वो जीवन में जो सक्सेस चाहिए वो कैसे सक्सेस होगी। आज एक एक्टर को क्यों अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि वो अपने रोल में अच्छी तरह से इन्वॉल्व था। हम किसी भी थिएटर एक्टर को जाकर पूछ सकते हैं, अगर 2 आवर्स के प्ले में वो सिर्फ औरों के रोल के बारे में सोच रहे थे, हाउ डिड यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस
0: टुडे? नहीं होता, कभी भी नहीं।
1: यू आर अ थिएटर एक्टर, तो आप एक दिन वो करके देखो। एक तो आप बीच में ही अटक जाओगे आई थिंक इन द मिडल ऑफ,
0: जैसे हम दूसरे को करेक्ट करने लगते हैं ना, खुद का अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है ओ यस
1: खत्म हो जाएगा।
0: थिएटर में भी हर परफॉर्मेंस से पहले 5 मिनट का साइलेंस रखते हैं, 5 मिनट का साइलेंस रखते, उसके बाद यू नो 1 आवर बिफोर द शो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वी जस्ट गो इनटू साइलेंस, हम उसके बाद बात नहीं करते।
1: right.
0: एक पूरा मेडिटेट करने के बाद 5 मिनट तक अपने साथ, देन एक्टर रिमेन्स with oneself.
1: अब जो कुछ, see, I didn't know this, but अगर वो 5 मिनट का साइलेंस करते हैं, वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि सारी डिस्ट्रैक्शन से एक्सटर्नल भी इंटरनल भी हर तरफ से हटकर अब आ जाओ सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के ऊपर, क्योंकि ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस अपना पूरा प्ले कर रहे हैं
0: दूसरों पर डिपेंड कर,
1: विदाउट बींग इन द सीन, एंड तब हमें अपने इस प्ले में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना मजा आना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना रोल प्ले ही नहीं कर रहे। वी आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग समबडी एल्सेस रोल, एंड कहीं ना कहीं शायद हमने अपना रोल ही ये बना लिया कि औरों के रोल के अंदर
0: हमने अपनी अपनी बात डालनी है।
1: अब ये जो हम औरों की स्क्रिप्ट सारा दिन लिखने की कोशिश करते रहते, इसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम होगा? व्हाट विल बी द बिलीफ?
0: ही इज रॉन्ग, द अदर पर्सन डजंट नो, आई नो बेटर।
1: सो वन, I can control the other person. ये एक deep belief.
0: Because I'm trying to change, you know, I'm trying to do things better for him.
1: तो लेकिन ये तो मेरा belief है ना कि आप मेरे control में हो, मैं अगर आपको बोलूंगी
0: तो आप करोगे,
1: आप करोगे. So this is a very very deep belief कि लोग मेरे control में हैं.
0: करें, करना चाहिए उन्हें, you know?
1: लेकिन जब हम बोल रहे हैं, अब उनको जब हम यू नो रोक रहे हैं, ठोक रहे हैं, या उनके प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, थॉट तो यही है ना कि ये सारी दुनिया
0: मेरे कंट्रोल में,
1: मेरे कंट्रोल में है, और ये सारी दुनिया मेरे चाहने के अनुसार चलनी चाहिए। दिस इज अ वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, द वर्ल्ड शुड गो अकॉर्डिंग टू my likes, my desires, my expectations, and also second belief system, my happiness is dependent on their behaving the way
0: I want
1: them to behave. तो इसलिए अपनी ही खुशी के लिए है, सारा कुछ खुशी के लिए है, अपनी खुशी के लिए औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते और उस प्रोसेस में अंदर ही अंदर और दर्द क्रिएट करते जाते। सो एक दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं जस्ट राइटिंग।
0: किसी कॉर्पोरेट बॉस के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम, आम अपनी जीती हुई, चाहे आप माँ हैं चाहे आप सबॉर्डिनेट भी हैं, you know?
1: जैसे माँ आपने कहा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये कंट्रोल का फीलिंग बहुत ज्यादा आता है। इवन एक पेरेंट को किस कॉन्शियसनेस से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि ये आत्माएं हैं जो मेरे घर में आए हैं, मेरा रोल है एक तो इनको फिजिकल प्रोटेक्शन देना, इंटेलेक्चुअल जो भी इनकी ग्रोथ कराना, बाकी मेरा रोल है इनको वो एक एनवायरमेंट देना, इनको वो पालना देना, एंड देन लेट देम टेक देयर लाइफ द वे दे वांट, नॉट लेट देम डू एंड बिकम व्हाट आई वांट। यू नो लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू मेक आवर चिल्ड्रन what we want. It's not, yes, we are there to guide, but then we are there to guide.
0: तो कितनी बार तो कहते हैं कि अगर तुमने मेरा ही सपना पूरा नहीं किया तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? Again, we need to check actually.
1: इसको चेक करने की चीज है कि उस आत्मा की अपनी जर्नी है, अपने यू नो लाइक्स डिसलाइक्स डिजायर्स जो भी सारा कुछ है, अपनी क्रिएटिविटी है। हम सोच रहे हैं वो हमारे थॉट पैटर्न से अगर अपना रोल प्ले करे तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी दब जाएगी एंड दैट सोल विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि वो अपने थॉट से भी नहीं चल रहा और मेरे थॉट से तो वो कर ही नहीं सकता। सो इवन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें एक गाइड की तरह बनना चाहिए ना, एक फैसिलिटेटर की तरह जो हमेशा है, ऑलवेज अवेलेबल, बट टू हेल्प मी, टू गाइड मी, नॉट टू कंट्रोल में। तो उससे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम हमेशा उनको रोकते हैं हर चीज पे ताकि उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले। हम कितना भी ट्राई करें उनके अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, बट अगर हम उनको गाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते, तो वो अपने अप्स एंड डाउन्स को तो
0: हैंडल कर
1: खुद ही फेस कर लेंगे। वी आर थिंकिंग कि हम बच्चों को इतना राइट राइट राइट दिशा पर ले जाएं कि इनके जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए। दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट। इट हैज टू बी हम उनको इतना स्ट्रांग बना दें ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चैलेंज आएगा, दे विल बी एबल टू जस्ट क्रॉस इट, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ आई फैसिलिटेट। यू नो एक मेंटर जैसे होता है, एक गाइड जैसे होता है, नॉट अ कंट्रोलर। तो हम पेरेंट्स कंट्रोलिंग वाली जो एटीट्यूड लेकर चलते उससे हम उसकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। तो एक दिन ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट नहीं लिखने के लिए औरों की,
0: और इसके लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा। सी अब जब हमने अपने ऊपर बात करनी शुरू की है, अपनी हर सोच को देखना शुरू किया है, तब रियलाइजेशन ये हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। आई थिंक समवेयर हमें ये फीलिंग कि मेरा कंट्रोल है दूसरे के ऊपर।
1: हाँ, सी दैट फीलिंग कि मेरा, अगर हमें किसी को भी बताना भी है, इट शुड बी लाइक दिस इज माय ओपिनियन, यू नो यू कैन टेक इट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हैव टू डू इट दिस वे एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो करेंगे ही वैसा एंड देन गेटिंग एंग्री
0: वो
1: नहीं कर पाते हैं उस तरह से। तो उससे फिर क्या हो जाता है, उनको राइट और रॉन्ग सिखाने के प्रोसेस में हम जब हर्ट हो जाते तो हमारा रोल क्या हो गया? मैंने तो
0: अपने रोल पे तो काम किया ही ना?
1: अपना रोल, अगर मुझे आज आपको देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, लेट्स से यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड मुझे गुस्सा आ गया, तो आपने तो जो भी गलत किया सो किया, वो आपके रोल का। मैंने जो गुस्सा किया, मैंने जो हर्ट क्रिएट किया, तो मेरा रोल भी तो खराब हो गया ना। तो पहले मेरे अपने रोल पर मुझे ध्यान देना, देन आई कैन प्रोबेबली शेयर विद यू और गाइड यू। बट आपके रॉन्ग को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने अपने भी रोल को खराब कर दिया, तो हर एक एक्टर का रोल
0: खराब होता गया ना फिर। हाँ, तभी तो ड्रामा खराब होने लग गया। अच्छा खासा जो है प्ले चल रहा है, उसको अगर हम एक मिनट में खराब,
1: एक नॉर्मल प्ले में भी अगर देखते थिएटर पे, लेट्स से हम अभी उस प्ले में हैं एंड मुझे अपनी लाइंस भूल गई, तो जो बाकी एक्टर्स हैं स्टेज पर उनका क्या रोल होता है?
0: वो कभी भी पता नहीं चलने देते किसी को भी कैसा हुआ, इतना फटाफट डिजाइन कर लिया जाता
1: लेकिन
0: है।
1: लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने ही रोल पर और अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट करते ताकि उनके रोल और उनके डायलॉग से मुझे वो क्यू मिल जाएगा कि वेयर वॉज आई मेकिंग अ मिस्टेक. दे डोंट स्टॉप एंड टेल मी द लाइन्स, दे डोंट स्पॉइल द हार्मनी ऑफ द ड्रामा, यू सी. तो सिमिलरली अगर कोई मेरे आसपास कुछ गलत कर रहा है, गलत डायलॉग बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मी गलत डायलॉग, गलत लाइन, सब कुछ, आई कैन जस्ट टेक केयर मोर ऑन माई रोल, यू नो, और भी ज्यादा ध्यान रखे कि आई विल नॉट गेट हर्ट, आई विल रिमेन स्टेबल. तो दैट माइट गिव द क्यू टू द अदर पर्सन
0: कि ओहो मैं भटक गया था, मेरी लाइन तो ये थी.
1: यस, लेकिन जहां वो भी लाइन्स अपनी खराब कर दी, मैंने भी अपनी लाइन्स खराब कर दी, एंड देन ग्रेजुअली हम दोनों ने अपनी लाइन्स को, डायलॉग को पूरी तरह से इतना मेस्ड अप कर दिया, देन दैट सीन बिकम्स वेरी वेरी अनप्लेसेंट, एंड फिर वो ड्रामा हमें पसंद नहीं आता, फिर हम कहते ये जीवन ऐसा क्यों है. तो ये वाली एक पॉइंट कि लेट एवरीवन बी, ये हमें यहां सफाई रखने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि हम बहुत एनर्जी, और देखो ना हम कितने लोगों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक दो की लिख रहे हों, चार की लिख रहे हों तो भी ठीक है, हम सारा दिन में कितने एक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते.
0: उसे ऐसा कहना चाहिए था. हाउ मेनी टाइम्स वी से दैट ही शुड हैव सेड दिस.
1: Yeah, is this the way to speak? This is this
0: he
1: what
0: should
1: he should
0: have done this.
1: Should have, you know, should have. Isn't we don't even say he could have said this. No, he should have said this. Means
0: this, this is what, you know, this is how the world should be.
1: Yeah, why? Because this is the way I would like the world to be. तो इसको एक होमवर्क के रूप से देखें कि आज एक दिन ट्राई करें. How do you feel जब आप औरों की स्क्रिप्ट में इंटरफेयर न करके
0: कंट्रोल एक्चुअली करना बंद कर दे, इवेल्युएट करना बंद कर दे. अमेजिंग, यू नो हाउ वी डू.
1: और ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है. इसका हमें बहुत, जैसे आपने आज शुरू में भी कहा ना कि आपका ऊपर नीचे होता है कि नहीं, आई हैव सीन सबसे ज्यादा कारण ऊपर नीचे होने का यही एक होता, जैसे ही मेरा फोकस जाता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं, देर इट्स गॉन. दैट स्टेबिलिटी है. मॉर्निंग में उठे, मेडिटेशन किया, इट्स वेरी नाइस, यू आर एब्सोल्युटली लाइक दिस, एंड देन द माइंड गोज इनटू इनको क्या बोलना चाहिए था, इनको क्या करना चाहिए था, एंड देर यू गो. अगर आप वो एक चीज पर वर्क कर लो, आपका माइंड ऐसे रहेगा. देर इज नथिंग एल्स आउट देर इन द वर्ल्ड जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस होने वाली है. ये हम जब हो जाते हैं, सो राइट नाउ आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लुक इन दिस, एंड आई कैन जस्ट से इट्स इजी बट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्लिप ऑफ हो जाता है. ये ऐसा संस्कार है कि यू नो वी ट्राई टू रिमाइंड आवरसेल्फ, एंड देन बिफोर वी आर अवेयर 10 मिनट बाद आई सडनली सी ओ माई माइंड इज अगेन थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, एंड अगेन वे किसी के बारे में जजमेंट पास कर रहा है. व्हाट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, कम बैक. लेकिन वो करते करते आई कैन सी कि वो परसेंटेज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. एटलीस्ट मेरी लिस्ट कम होती जा रही है कितने लोगों के बारे में आई एम थिंकिंग, एंड नाउ दैट लिस्ट इज कमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड वी नीड टू फिनिश इट, क्योंकि कोई भी नहीं है जो मेरे कंट्रोल में है. पहले तो क्या हो रहा था, गाड़ी चलाते हुए भी हर एक ड्राइवर के ऊपर भी कमेंट पास हो रहा था, कैसे चला रहे हैं, लाइन में नहीं खड़े, टोल पर खड़े हैं, गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हैं. जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीवन, उन्होंने तो फिर भी ओवरटेक करना है, लाइन को तोड़ देते हैं, टैग की लाइन में कैश फर्द, ओ देर इज सो मच टू गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट, यू नो, इफ यू अलाउ योर सेल्फ टू गेट सक्ड आउट. There is just too much happening.
0: I think for some time, you know, for some time we need to really focus on ourselves actually, and we should become little selfish.
1: No, very selfish.
0: I keep on saying this because I understand, you know, हम जैसे आपने कहा बाहर continuous observe करते रहते हैं, और वो हम observe, और हम कहते हैं हम तो neutral observer है, लेकिन हम कितनी सारी चीजें उन पर
1: न्यूट्रल होंगे तो यहाँ disturbance नहीं होगा ना. अगर आप detached होकर देखो, अभी भी if I'm standing in the traffic jam, I can see people where they are making their mistakes, they're overtaking wrong, but
0: it's not affecting you.
1: Create anything here. अभी भी दिख तो रहा है ना, आंखें कान बंद थोड़ी है कुछ भी, लेकिन यहां कुछ नहीं होना चाहिए. ओके, दिस बिकम्स एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करें कि हर एक अपना अपना रोल अपने अपने अनुसार प्ले कर रहा है, एंड दे हैव द राइट टू डू इट. एवरीवन, मेरे अंदर बहुत कुछ है अभी विच पीपल मस्ट बी सिटिंग एंड थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग, बट आई एम फीलिंग दैट वट एवर आई एम डूइंग इज राइट. तो इसी तरह सामने वाला भी जो कुछ भी कर रहा होगा, इवन अगर वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, लाइन तोड़ रहा है, उसके पास उस टाइम कुछ ना कुछ लॉजिक होगा उसके लिए. और जैसे ही हम ये लेट बी करना शुरू करते, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, लोगों को, कि हर एक अपने अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहा है एंड एवरीबडी इज एक्यूरेट इन द रोल दे आर प्लेइंग. यस, इफ समबडी आस्क्स मी फॉर हेल्प, इफ समबडी वांट्स मी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन देयर ड्रामा, यू नो, किसी का अपना कोई ड्रामा है एंड समवन सेज यू नो प्लीज गेट इन्वॉल्व्ड ताकि आप हमें हमारे ड्रामा में कुछ हेल्प करो, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन्वॉल्वमेंट, लेकिन नॉट उसके अंदर हम इतना घुस जाएं कि उस सीन की, उन एक्टर्स की जो इमोशन है
0: वो हमें हम करने पड़ा जाए. लेकिन वो एक्चुअली होता बहुत कम हो पाता है,
1: क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने कहा, अगर इफ योर रोल सी ये पेरेंट के रोल है, ये ही बॉस का रोल है, ये टीचर का रोल है, क्योंकि हमारा रोल है किसी तरह तब कि हम औरों के ड्रामा में थोड़ा सा इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि हम गाइड हैं, हम फैसिलिटेटर हैं. लेकिन वो रोल कहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता, जब वो दूसरे एक्टर के इमोशन हमारे ऊपर ओवरपावर कर जाते हैं. बच्चा दर्द में है, मेरा रोल है उसके साथ बैठना, टू फाइंड आउट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एंड टू शेयर विद हिम व्हाट इज द राइट वे एंड वो कैसे ठीक कर सकता है, कहाँ वो गलत जा रहा है, एवरीथिंग आई हैव टू डू. लेकिन अगर मैंने सेम दर्द क्रिएट कर लिया जो बच्चा है, या शायद मैं बच्चे से भी ज्यादा दर्द में एज अ मदर मैं चली गई, देन समवेयर आई विल नॉट बी एबल टू प्ले माय रोल प्रॉपरली. क्योंकि जब एक बार यहाँ दर्द क्रिएट हो जाता तो वो क्लैरिटी ही खत्म हो जाती कि ये क्यों, क्या, कैसे इसको ठीक करना, इट गोस अवे.
0: लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम रोल प्ले की बात करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा मैकेनिकल हो गया, यू नो, समवेयर डीप विद इन, बिकॉज वी एंजॉयड इट सो मच, और लाइक वी थिंक अगेन ये बिलीफ सिस्टम है कि यही, ऐसे ही तो जीना है, ऐसे ही मुझे रोल प्ले भी करना है अपना.
1: रोल प्ले करना है ये मैकेनिकल होने के बजाय क्रिएटिव हो जाता है. मैकेनिकल तो अभी तक चल रहे थे,
0: ऑटोमेटेड.
1: हाँ, और मैकेनिकल क्या होता है, जहाँ चॉइस नहीं है कि बच्चा दर्द में है तो मैकेनिकल है कि पेरेंट ने दर्द में जाना ही है. मैकेनिकल मीन्स ऑटोमेटिक, बटन दबाया और हो गया. उसने गुस्सा किया तो मेरा बटन यहाँ दबा, मुझे उदास होना ही है. दिस वॉज ऑल मैकेनिकल, बट नाउ इट्स बिकम क्रिएटिव कि मेरे पास चॉइस है. वो हर्ट है, मैं स्टेबल भी रह सकती, मैं न्यूट्रल रह सकती, मैं और भी ज्यादा पॉजिटिव होकर कुछ और क्रिएटिव सोच सकती. लेकिन पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, देयर वॉज जस्ट वन चॉइस. एंड तब हम कहते थे अटैचमेंट है तो हर्ट के साथ हर्ट होना नेचुरल है. ये नेचुरल था एंड वी टुक इट एज अ साइन ऑफ लव कि अगर वो दर्द में है और मुझे भी दर्द हो रहा है, इट इज अ साइन दैट हम बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं.
0: Somewhere we were actually taking love as attachment.
1: And we even say to each other, I can feel your pain. Parent child के साथ है, बच्चे से कोई गलती हो गई, पेरेंट हर्ट हो गया, कहीं उसकी पेरेंटिंग स्किल पर यू नो क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो वो अपने कॉम्प्लेक्सेस में इतना चले जाते हम कि हम बस चाहते हैं कि बच्चा किसी भी तरह ठीक हो जाए. बस वो जो मेरे ऊपर स्टिग्मा लगा है, दुनिया के सामने नहीं, मेरे लिए, अपने लिए, कि मेरी पेरेंटिंग पे जो स्टिग्मा लगा है वो ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसको कहते हैं तुम ठीक हो जाओ. यू नो वी डोंट रियलाइज दिस, बट ये इसलिए है, तुम ठीक हो जाओ. वी नॉट रेडी टू गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या दर्द है, क्या सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई, कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओ. बस तुम ठीक हो जाओ, क्यों, क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे
0: तो मैं फिर रीअश्योरेंस हो जाएगी कि
1: मैं ठीक हो जाऊंगा. सो यू नो देन आई एम नॉट प्लेइंग दैट पेरेंट रोल इन द वेरी राइट वे. और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा क्लटर नहीं होगा, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंट होता जाएगा. सारे आंसर्स, सारे सोल्यूशंस यहाँ पर है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, कि एक ट्यूटर है जो अंदर बैठा है, लेकिन अंदर की आवाज सुनने के लिए ये नॉइज को खत्म करना पड़ेगा. अभी क्या हो रहा है, इतनी नॉइज है, वो अंदर से आवाज देता भी है.

0: मानती हूँ तो मैं वो करने से अपने आप को रोक दूंगी जिस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और विद स्मोकिंग और आई डोंट वांट आई शुडन्ट बी वॉचिंग 3 hours ऑफ टेलीविजन आई डोंट हैव टाइम बट आई एम स्टिल वॉचिंग. तो अंदर से ये छोटी छोटी बात आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरी बिग वंस कि छोटी सी आवाज अंदर से आएगी मत देखो या ये मत लो ये तुम्हारे लिए अभी इट्स नॉट गुड लेकिन आई से गो अवे मुझे खुशी चाहिए यू नो. तो मैं उस आवाज को इसलिए इग्नोर कर देती हूँ कहीं वो आवाज मुझे मेरी खुशी से ही दूर लेके जा रही है विदाउट रियलाइजिंग वो आवाज ही मुझे मेरी खुशी तक लेके जाने वाली है मेरी आवाज.
1: वंस माय डॉटर आल्सो टोल्ड मी कि शी सेज मेरे को पता चल रहा है कि मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रही हूँ प्लीज कम एंड स्कोल्ड मी मॉम. आई सेड you know the realization is so much.
0: Yes it is but I'm not listening to myself so I need someone else to come and say it to me. To kya hota hai jab usko bar bar daba diya jata to bhi andar hi wo dab jati hai and then when it will come out wo ek emotional outburst ke roop mein aayegi. Hamari conscience jisko hum kehte that keeps giving me the signals and it always gives me the right signal always. Now it's just up to me to take that signal. Ignore करते गए it's like हमें एक बहुत अच्छा teacher मिला है जो हमेशा हमें अच्छा सिखा रहा है लेकिन मैं उस teacher की आवाज you know आवाज को उसकी wisdom को क्योंकि सारी wisdom भरी हुई है मेरे जीवन में मेरे लिए क्या सही है
1: वो मेरे पास है
0: मेरे पास answer है. I never need to go and ask anyone else. लेकिन
1: और आजकल हम हर चीज हर छोटा decision भी office का decision भी घर का decision भी 10 लोगों से पूछ के कर रहे होते हैं
0: because we not listening. So वो ट्यूटर अंदर बैठा है उसकी बात को सुने और जितना सुनते जाएंगे यू नो ये टीचर ऐसा है कि हम उसकी बात को जितना सुनते जाएंगे ये हमें विजडम और भी देता जाएगा
1: क्लैरिटी और
0: यू नो सपोज आप मुझे कोई अच्छी बात बता रहे हो मैं सुनती ही नहीं फिर आपने दूसरी बार बताया मैं सुनती नहीं 4 बार बताओगे पांचवी बार आप मुझे बोलना ही बंद करोगे तो मैंने ही अपने अंदर जो थी एक इतनी अच्छी चीज उसको मैंने दबा दिया. और अगर मैं बार बार आपकी बात सुनने लग जाऊं तो आप सोचोगे चलो मेरे कहने के अनुसार से ये कर रहे हैं तो आप और बताना शुरू करोगे और बताओगे इमेजिन माई लाइफ विल बिकम वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल.
1: बहुत सुंदर. तो आज जो हम इस प्रोसेस पे हैं कि हमें करना क्या है जिन बिलीफ सिस्टम्स को पकड़कर हम अभी तक बैठे थे उन्हें छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो लोगों को छोड़ना पड़ेगा लोगों की स्क्रिप्ट लिखनी छोड़नी पड़ेगी कि लेट बी एक तो लेट गो और जो जैसा है उसे वैसा रहने दें उसके ऊपर चिंतन मत करते रहें कि वो ऐसा कर ले वो ऐसा कर दे मेरा टीचर ऐसे कर ले मेरा हस्बैंड ऐसे कर ले. समवेयर वी नीड टू लेट बी वो जो जैसे हैं. और दूसरी बात कि जहां हमने अपने आप को साइलेंट करके उस आवाज को सुनना शुरू कर दिया चाहे इम्प्लीमेंट अभी भी ना करें यू नो चाहे मैं तो कहती हूँ चाहे इम्प्लीमेंट ना करो सुन के उसको रजिस्टर तो कर ले एट टाइम
0: दबा ना दे उसको
1: यू नो उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे यस दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग इट्स ओके बट नेक्स्ट टाइम आई विल लिसन टू यू यू नो. तो यहां ये प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है उसमें जैसे हमने कहा कि हर एक घंटे के बाद एक मिनट का साइलेंस ये बात की याद दिलाएगा मेरी आवाज मुझे अपने साथ सुनाता जाएगा. तो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिस है वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि फिर हम चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर करें. तो कोई बात मन में आ रही है कोई सवाल है अभी भी है या इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई ऑब्स्टिकल है आप हमें संपर्क कर सकते हैं या तो फोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फोन नंबर है 01244-266-7000, 99993-444-555, 99993-444-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. तो सिस्टर शिवानी आज की जो पूरी बातचीत रही बहुत क्लैरिटी से ये समझ में आ गया कि करना क्या है. आप कितना करेंगे यह हमारे ऊपर निर्भर करता है लेकिन ये डेफिनेट है कि हम करेंगे जरूर क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ करना. थैंक यू सो मच ओम शांति. और अब आपसे भी विदा लेते हैं लेकिन इसी बात के साथ कि ये जो हमें समझ में आ रही है बात लगता है कि पॉसिबल है तो लेट्स ट्राई इट आउट ना. पहले भी तो हम इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे बदला जीवन आगे और भी बदलेगा हैप्पीनेस हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं ओम शांति.

0: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
1: हम थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अति सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: अब के सावन महादेव की भक्ति में डूबने के लिए बने रहिए रेडियो माइंड ट्री के साथ। हर हर महादेव।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: रेडियो हाँ जी 1674 है।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय दिस सलमान खान एंड यू लिसनिंग टू रेडियो हांजी। हाय दिस सलमान खान एंड यू लिसनिंग टू रेडियो हांजी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

हाँ जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
5: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता। ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
6: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
7: पर टिलो ने काला कोट ऐवे नहीं पाया।
5: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
8: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
9: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
8: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
9: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
8: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
9: आहो जी आहो।
8: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
10: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
11: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
10: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
11: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: ओ अक्षरा ज्वेलर दी दूजी लोकेशन है रिवर स्टोन च।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टोन विच भी तुहाडी सेवा विच।
4: चक दे इंडिया, चक दे इंडिया।
5: भारतीय महिला फुटबॉल टीम AFC महिला एशियन कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। मुकाबला बड़ा है क्योंकि 12 में से 6 टीमें सीधे 2027 फीफा महिला विश्व कप ब्राजील के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब इन ब्राजील न्यू टाइग्रेसेस अंडरडॉग है और उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये समय है भारत के लिए अपना जुनून दिखाने का। भारत मंगलवार 10 मार्च को वेस्टर्न सिटी स्टेडियम में चीनी टाइपे से मुकाबला करेगा।
2: इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।